पख पगिख राजा फुनाइ खुडा लगत फुलौ सब मछम विंडो नि तो खबर रागिन छरि था मेरिया करेंसी मसिरिंगित बलेशा लबी महल धरे रुफिया लैंड बिलो द विंड।